मौका देने पर रजामंदी जाहिर करती है। फॉक्स न्यूज के एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बातचीत को आगे बढ़ाया है जो उन्होंने इस माह के अवाल में नेटो इजलास के दौरान तुर्क दारुलहुकूमत अंकारा में शुरू की थी। जेलेंस्की ने कहा कि हमने इसे अंकारा में शुरू किया था ताकि यूक्रेन को पैट्रियट की तैयारी के लिए इजाजतनामा जारी किया जाए। ये अहम है क्योंकि हमें इसकी अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनकी मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस दरख्वास्त पर इत्तफाक किया है। जेलेंस्की ने कहा कि आज सदर ट्रंप के साथ हमारी बातचीत बड़ी मुफीद रही, उन्होंने हमें इजाजतनामा देने की हामी भर ली है। जेलेंस्की ने मजीद कहा कि बाद अज़ां उन्होंने अमरीकी दिफाई कंपनियों के अहदेदारों से मुमकिन मुश्तरका पैदावार पर बातचीत के लिए मुलाकातें कीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम मुश्तरका पैदावार करेंगे, ये इंतहाई अहम है। गुज़श्ते रोज़ वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने ट्रंप और अमरीकी सेनेटर्स के साथ यूक्रेन की फौरी फिजाई दिफाई ज़रूरियात पर बात की है। उन्होंने कहा कि असल मसला एंटी बैलिस्टिक सिस्टम्स और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: वेनेजुएला की वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि काराकास ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची के उन बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ईरान के सफीर को तलब किया है, जिन्हें वेनेजुएला ने तहजीब से गिरे हुए और नामुनासिब करार दिया है। उमर खारजा ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि वेनेजुएला में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर को वेनेजुएला के इदारों और हुक्काम के खिलाफ किए गए हद तक आमेज और नामुनासिब अल्फाज पर एहतजाजी मरासला देने के लिए वेनेजुएला की वजारत खारजा में तलब किया गया था। वेनेजुएला के हुक्काम ने यह वाज़ेह नहीं किया कि एहतजाज किस मखसूस बयान पर किया गया। तहम इंटरनेट पर गर्दिश करने वाली वीडियो से मालूम होता है कि अब्बास अराकची ने अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात का जिक्र करते हुए मुबैना तौर पर कहा था कि ईरान वेनेजुएला नहीं है जहां एक शख्स को निशाना बनाया जाए और बाकी सब खौफजदा होकर पीछे हट जाएँ। ये सफारती तनाज़ा दोनों तेल पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान एक नायाब खिंचाव का इशारा हो सकता है, जिन्होंने 1999 में साबिक आन जहानी सदर ह्यूगो शावेस के बरसर इकतदार आने के बाद से करीबी सियासी और इकतसादी ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। अमरीका मुखालिफ बयानी के लिए मशहूर काराकास और तहरान ने गुज़िश्ता 3 दहाइयों में तवानाई, कानकनी, सेहत और तालीम के शोबे में माहिदों के जरिए अपने बाहिमी तआवुन को वसअत दी है। यूरोपीय कमीशन ने एक बार फिर जोर दिया है कि तमाम रियासतें जेर इल्तवा गिरफ्तारी के वारंट्स पर अमल दरामद समेत बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत के साथ मुकम्मल तआवुन करें। जबकि इसराइली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का तैयारा दो बार कई ICC रुकन रियासतों की फिजाई हदूद से होता हुआ अमरीका की जनब जा रहा था। मंगल को यूरोपीय कमीशन की दोपहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तर्जुमान अनवार अल-अनूनी ने नेतन्याहू के मखसूस मामले पर तबसरा करने से गुरेज किया और कहा कि ICC से मुतलिक कोई भी मखसूस सवाल बराह रास्त ICC से पूछा जाना चाहिए। तहम उन्होंने यूरोपीय यूनियन के मौकफ को बैरूए कार लाते हुए वाज़े किया कि हम बतौर यूरोपीय यूनियन ICC और रोम इंस्टीट्यूट में दर्ज उसूलों की हिमायत करते हैं। हम अदालत की आज़ादी और गैर जानबदारी का एहतराम करते हैं और हम बतौर यूरोपियन यूनियन बैन अल-अक़वामी फौजदारी इंसाफ की जद्दोजहद में तआवुन के लिए मजबूत अज़्म रखते हैं। उन्होंने 2023 में यूरोपीय कौंसिल के नतायज का भी हवाला दिया और जोर दिया कि कौंसिल तमाम रास्तों से अपील करती है कि वह ज़ेर इल्तवा गिरफ्तारी के वारंट्स का फौरी तौर पर निफाज समेत वो अदालत के साथ मुकम्मल तआवुन को यकीनी बनाए। यह बयानात उस वक्त सामने आए जब फ्लाइट रडार के डेटा के मुताबिक नेतन्याहू का तैयारा गुज़िश्ता पीर के रोज़ वाशिंगटन DC जाते हुए यूनान, इटली और फ्रांस की फिजाई हदूद से गुजरा, जो कि रोम कानून असासी की रुकन रियासतें हैं। यह परवाज़ बड़ी हद तक उस गुजरगाह की अक्कासी करती है जिसे नेतन्याहू ने 28 दिसंबर 2025 और 10 फरवरी को अमरीका के अपने सबका दौरों के दौरान इख्तियार किया था। ICC ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वजीर दिफा याओ गैलन के खिलाफ गजा में इसराइल के मुबैना नस्ल कुशी के दौरान किए गए जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के वारंट भी जारी किए हैं। अमरीका ने चीन का तैयार करदा इंसान नुमा रोबोट्स की दरामद पर पाबंदी लगा दी है। अमरीका ने कौमी सलामती के खतरात का हवाला देते हुए गैर मुल्की साख्ता नए इंसान नुमा रोबोट्स की दरामद पर पाबंदी लगाई है। US फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC के फैसले के मुताबिक नए इंसान नुमा 4 टांगों वाले रोबोट्स के साथ साथ अहम पावर कन्वर्टर

रॉयटर्स के मुल्क में दाखिले को भी रोक दिया गया है। हुकाम ने खबरदार किया है कि आलात जासूसी और साइबर हमलों का खतरा रखते हैं। इस फैसले पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए चीनी इंतजामिया ने वाशिंगटन पर तिजारत को सियासत ज़दा करने का इल्ज़ाम लगाया और ऐलान किया कि इस हवाले से ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। हालिया अयाम में चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों ने कारखानों और घरेलू इस्तेमाल के लिए इंसान नुमा रोबोट्स की तैयारी में तेज़ी से तरक्की करते हुए आलमी मंडी में नुमाया मकाम हासिल किया है। दूसरी जानब वाशिंगटन इंतजामिया मसनू जहानत और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अपनी कौमी सलामती और मकामी पैदावार के तहफ़ के बहाने पाबंदियों में इजाफा कर रही है। फ्रांस के जुनूब मगरबी इलाके जेरोन में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी जंगलाती आग दर्जा हरारत में दोबारा इजाफे के साथ ही दीगर मकामात पर भी भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मस्कुरा इलाके में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान लगने वाली आग की वजह से 70,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि फ्रांस भर में हालिया दिनों में निकाले जाने वाले अफराद की मजमू तादाद 2,20,000 से तजावुज़ कर गई है। स्पेन और पुर्तगाल में भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि जनूबी ऑस्ट्रेलिया के हुकाम ने बुध को कहा है कि रियासत में मजीद 11 मुश्तबा वाकयात की निशानदेही के बाद H5 नस्ल के बर्ड फ्लू के मकामी तौर पर फैलने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। ऑस्ट्रेलवी टीवी ने रिपोर्ट किया कि उनमें से 7 वाकयात रियासत के जुनूब मशरक में और 4 कैंगरू जजीरे पर पाए गए हैं, जबकि हुकाम अभी हतमी टेस्टिंग के नतज के मंतज़र हैं। जनूबी ऑस्ट्रेलिया की वजीर बरए प्राइमरी इंडस्ट्री क्लेयर स्क्रियोन ने कहा है कि इस वायरस के मकामी फैलाव का कवी इम्कान है। रियासती हुकूमत को उम्मीद है कि बीमारी के जंगली परिंदों के दरमियान मकामी तौर पर फैलने की तस्दीक के लिए कॉमनवेल्थ साइंसी और सनती तहकीकती इदारे के लिए लैब टेस्ट के नतज बुध या जुमेरात तक आ जाएंगे। सिक्रियोन ने कहा कि हमने मुशाहिदा किया है कि दुनिया भर में H5 बर्ड फ्लू को रोक नहीं सकते और दुनिया के हर दूसरे बर आज़म में बिलाशुबा मकामी तौर पर यह मुंतकली हुई है। सिक्रियोन ने मजीद कहा कि रियासत या मुल्क के दीगर हिस्सों में पोल्ट्री फार्म्स में H5 बर्ड फ्लू की कोई निशानदही नहीं हुई। और एक खबर के मुताबिक इजाफी ईंधन टैंक के हामिल एक तैयारे ने पैसिफिक और अटलांटिक समंदरों के ऊपर से गुजरते हुए 23,075 किलोमीटर का रास्ता बिला किसी वक्फे के 24 घंटे और 24 मिनट में तय कर लिया है। यह परवाज टूलोज में वाकई कारखाने में लैंड करने के साथ मुकम्मल हुई। बताया गया कि इस परवाज ने 2005 में बोइंग 777-200LR के साथ हांगकांग से लंदन तक पैसिफिक रास्ते 22 घंटे 42 मिनट का सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रवास ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइट रडार 24 का कहना है कि इस सफ़र प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा मॉनिटर किए जाने वाली दूसरी परवाज है और अंदाजन 36,00,000 अफराद ने तैयारे के रूट को बराह रास्त देखा। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं।

सामिन, एक बंदरगाह का क्या फ़ायदा होता है? जहाज आते हैं, जाते हैं, सामान उतारा जाता है, ड्रम कतारों में रखे जाते हैं और खाते बंद कर दिए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए बंदरगाह महज तिजारत का एक आम पड़ाव होती है, लेकिन कुछ बंदरगाहें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मालो असबाब ही नहीं बल्कि इंसानियत का मुश्तरक हाफजा भी मुंतकिल करती हैं। उनकी लहरें सिर्फ जहाज़ों को ही नहीं बल्कि तारीख के धारे को भी रास्ता दिखाती हैं। आज हम अपना रुख बाहिर रूम की नमकीन हवा की तरफ कर रहे हैं। हम एक ऐसे मगरूर साहिल की तरफ जा रहे हैं जिसने हज़ारों सालों से अजीम सल्तनतों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई और जो मशरक़ी बाहिर रूम के अहम तरीन रास्तों में से एक रहा है, गजा की तरफ। आज टेलीविज़न की स्क्रीनों पर अक्सर सिर्फ जंग, मुहासरे और तबाही के हवाले से याद किया जाने वाला ये शहर दर हकीकत इंसानी तारीख के कदीम तरीन, गहरे तरीन और अमीर तरीन तजारती मराकज में से एक है। आइए आज की धुंध को थोड़ा सा छांटते हैं और गजा की 5000 साल कहानी का दरवाज़ा मिलकर खोलते हैं। अब हम अपने जहन में एक नक्शा बनाते हैं। एक तरफ मिस्र की कदीम सरजमीन, दूसरी तरफ अरब और मेसोपोटामिया, शुमाल में शाम, अनातोलिया और बहरा रूम के रास्ते यूरोप। इन्हीं तमाम रास्तों के गठजोड़ पर मुश्तमिल इस तंग साहिली पट्टी पर एक ही शहर उभरता है, गजा। गजा सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं था। यह कदीम दुनिया के अहम तरीन ज़मीनी तिजारती रास्तों में से एक, विया मारिस यानी समंदरी रास्ते का सबसे अहम स्ट्रेटजिक पड़ाव था। मिस्र से शुरू होने वाला यह कदीम रास्ता गजा से होता हुआ शाम, अनातोलिया और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इसीलिए इस शहर की ना सिर्फ बंदरगाह बल्कि उसके रास्ते भी कभी खाली नहीं रहे। जोग्राफिया ने गजा को एक ऐसा मकाम दिया था कि जो ताकत उस पर कंट्रोल हासिल करती वो मशरक और मगरब के दरमियान तजारत के अहम तरीन चौराहे को भी कंट्रोल करती थी। यही वजह है कि तारीख में कई रियासतें और सल्तनतें इस शहर पर कब्जा करना चाहती थीं। अब हम वक्त के पहिए को हजारों साल पीछे घुमाते हैं। मिस्री फिरौन एशिया की तरफ अपनी मुहिमात में गजा को सिर्फ एक पड़ाव के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कबल अज़ मसीह 15वीं सदी में हुकूमत करने वाले थटमोस सोम की फौजी मुहिमात के रिकॉर्ड्स और अमरनाथ खतूत में गजा एशिया में मिस्र के अहम तरीन इंतजामी और फौजी मराकज में से एक के तौर पर सामने आता है। सहराओं की चिलचिलाती गर्मी को पीछे छोड़ने वाली फौजें पहली बार यहीं बहरे रूम की ठंडी हवा से मिलती थीं। गजा सिर्फ एक सरहदी किला नहीं था बल्कि मशरक की तरफ खुलने वाले मिस्र के दरवाजों में से भी एक था।

लेकिन गजा को जिस चीज़ ने असल में नाकाबिल फरामोश बनाया वो जंगों से ज़्यादा तिजारत थी। वो लोबान का रास्ता जिसका जिक्र तारीख की किताबों में अक्सर मिलता है, जुनूबी अरब के तपते हुए सहराओं से निकलने वाले सैकड़ों ऊँटों के काफिले, हफ्तों और बसा औकात महीनों के सफ़र के बाद जिस पहली बड़ी बहर रूम की बंदरगाह पर पहुँचते थे वो गजा ही था। इन काफिलों का सामान आम नहीं होता था। मुकदस मरमकी लुबान की गोंद, कीमती धूनिया, हिंदुस्तान से आने वाली दारचीनी, काली मिर्च और कीमती पत्थर, सहरा की खुशबू गजा की बंदरगाह पर बहिरा रूम के नमक से मिलती थी। यहाँ से जहाज़ों पर लदा यह कीमती सामान इस्कंदरिया, एथेंस, रोम और बहिरा रूम के कोने कोने की तरफ रवाना होता था। और इस शहर की फितरत दुनिया को सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि एक और दौलत भी पेश कर रही थी। कदीम रोमन दौर के ज़राए और कुछ तारीखी रवायात में गजा के इर्द गिर्द के साहली रेत के ज़र्रात को शीशा साजी में इस्तेमाल होने वाले आला मेयार के सिलिका के ज़राए में शुमार किया जाता है। अगरचे कदीम शीशा साजी का वाहिद मरकज़ गजा नहीं था, लेकिन यह खित्ता मशरकी बहरा रूम के अहम तरीन शीशा साजी और तजारती मराकज़ में से एक के तौर पर नुमाया रहा है। गजा उन शहरों में से एक था जो अपनी मिट्टी की रेत से भी निफासत पैदा करता था। अब ज़रा आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद करें। हम ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी सदी की बहरा रूम की एक खुशगवार सुबह में हैं। सूरज अभी तुलू हो रहा है। बंदरगाह पर लंगर अंदाज लकड़ी के तिजारती जहाज़ों के मस्तूल आसमां की तरफ बुलंद हो रहे हैं। नए आने वाले काफिले के ऊँट मसालों के भारी थैलों के साथ रेत पर बैठे हैं। ऊँटों के घंटों की आवाज़ें मुर्गाबियों की चीखों में घुल मिल रही हैं। बाजार में एक बड़ा पुरहजूम और शोर है। एक कोने में एक फिनिशियन ताजर अपना सामान मुतारिफ करवा रहा है। दूसरे कोने में एक रूमी ताजर मिस्री कतान का मुआयना कर रहा है। एक बद्दू जिसने जिंदगी में पहली बार समंदर देखा है और एक मल्लाह जिसने अपनी जिंदगी लहरों पर गुजारी है इसी चौक में एक साथ खड़े हैं। गजा सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि जबानों, सकाफतों, अकायद और कहानियों के मिलाप का भी एक बहुत बड़ा आलमी चौराहा था। कौन कौन नहीं गुजरा इस शहर से? मिस्री, अशूरी, बाबुल के लोग, पारसी, सिकंदर आजम, रूमी और बाज़ंतीनी। बाद में इस्लामी फुतुहात के साथ ये शहर एक नए

खड़ा हो गया। आज माहिरीन आसार कदीमा जब भी गजा की मिट्टी में खुदाई करते हैं तो लगता है जैसे तारीख का एक नया सफहा खोल रहे हैं। कांसे के दौर की बंदरगाह के आसार, रोमी दौर की सुतूनों वाली सड़कें, बाजंतीनी पिचकारी, मिट्टी के बर्तन और मकबरे। गजा अपनी मिट्टी के नीचे हजारों साल पुराना हाफिजा अब भी महफूज रखे हुए है और इस हाफजे की सबसे हैरत अंगेज निशानी उसके नाम में छुपी है। कबल अज़ मसीह 15वीं सदी के मिस्री रिकॉर्ड्स में इस शहर का नाम गज़ात मिलता है। अशूरिया की तख्तियों पर भी ये इसी तरह सामने आता है। आज अरबी में जो नाम हम गज़ा इस्तेमाल करते हैं वो भी इसी जड़ से निकलता है। दुनिया में ऐसे शहर बहुत ही कम हैं जिनका नाम 5000 साल तक बड़ी हद तक इसी तरह बरकरार रहा है। आज जब गजा का नाम लिया जाता है तो शायद बहुत से लोगों के जहनों में सिर्फ तबाही, मुहासरा और दर्द ही उभरता हो। हालांकि ये कदीम शहर इंसानियत के मुश्तरका हाफिजे का एक अहम तरीन पड़ाव है, एक ऐसा बहिरा रूम का दरवाज़ा जो हजारों साल तक जहाज उम्मीद के साथ लंगर अंदाज होते रहे, जिसकी हवाओं में मसालों की खुशबू रची बसी रही और जहाँ मुख्तलिफ जबानें, सकाफतें और इंसान आपस में मिलते रहे। माजी को जानना हाल को समझने की सबसे ताकतवर चाबियों में से एक है। कभी कभी किसी शहर को वाकई जानने के लिए सिर्फ आज के धुएं को नहीं बल्कि हजारों साल से समंदर की तरफ खुलने वाली उसकी कदीम बंदरगाह को देखना पड़ता है। लेकिन फलस्तीन की पोशीदा कहानियां सिर्फ बंदरगाहों पर ही नहीं लिखी गईं। कभी ये किसी सहराई गार की खामोशी में छुप गईं और कभी 2000 साल तक किसी हाथ के छुए बगैर पुराने तोमारों के दरमियान इंतजार करती रहीं। चुनाचे अगली किस्त में हम उन खामोश गारों का दरवाज़ा खोलेंगे जो हमें इंसानी तारीख की सबसे बड़ी आसार कदीमा की दरियाफ्तों में से एक की तरफ ले जाएंगी, बहर मुर्दार के तुमार। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियाँ।